0: खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवारी हो हरियाली मतवारी
1: खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवारी हो हरियाली मतवारी।

0: रखो।
1: खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवारी हो हरियाली मतवारी।
2: खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवारी हो हरियाली।